ना चूड़ी पेटिया मैं इधर मेरी कुरान किया ऐ किया ने हुई ला इतु आदम